0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो चौदहवें का यह पहला विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। ओत्तो जेसिमा अद्वेनियंस जो रेरुम नोवारुम की 80वीं वर्षगांठ में लिखी गई संत पापा पॉल छठवें इस दृष्टिकोण को औद्योगिकीकरण के उपरांत समाज में लागू किया, जो शहरीकरण, गरीबी के नए रूपों और तेजी से हो रहे सांस्कृतिक बदलावों द्वारा पहचाना जाता था, जहां लोगों और समुदायों के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। संत पापा पॉल छठवें ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि यद्यपि सुसमाचार की घोषणा, जो हमारे समय की संस्कृति और ऐतिहासिक संदर्भ की विभिन्नता में लिखी और जी गई थी, उसका संदेश पुराना अप्रचलित नहीं हुआ था। इसके बदले यह मानव के दृष्टिकोण, उसके संबंधों, अधिकार और जन सामान्य के हित के बारे में कहता है, जो अब भी अर्थव्यवस्था, राजनीति और सांस्कृतिक चुनाव को दिशा देने के योग्य है। दूसरे शब्दों में सुसमाचार की महत्वपूर्णता हमारे लिए बनी रहती है, क्योंकि यह मानवीय या अमानवीय, हमारे परिवर्तन होने वाली परिस्थितियों में स्वतंत्र या प्रताड़ना करने वाली बातों को देखने और पहचानने में मदद करती है। कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा के संबंध में संत पापा पॉल छठवें की अति विशिष्ट विरासत यह रही, जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें मानवीय सम्मान विकास से बाहर रखा जाता है, तब तक ख्रिस्तीय समुदाय शांति की शाब्दिक घोषणा मात्र से संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसके विपरीत लोग जहां हाशिए पर हैं, सुसमाचार को उन आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं पर निर्णय लेने की अनुमति देनी चाहिए, जो जैसा कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमें बाद में याद दिलाते हैं, वास्तविक पाप की संरचनाएं बन सकती हैं। परिणाम स्वरूप विकास की प्रक्रियाओं में किसी भी व्यक्ति या लोगों को उपभोग की वस्तु स्वरूप नहीं देखा जाए। श्रोताओं, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की समृद्ध सामाजिक धर्म शिक्षा 20वीं सदी की महान वैचारिक प्रणाली के संकट और आर्थिक वैश्वीकरण के शुरुआत के चौराहे पर है। उनका विश्व पत्र लबेरुम एक्स रेचेंस, कड़ी मेहनत करना, जो रेरुम नोवारुम के 90 सालों के प्रकाशन उपरांत लिखा गया, जिसके द्वारा कार्य पर चिंतन हेतु एक नया मार्ग खुला। यह उचित मेहनतानाओं को पूरे सामाजिक आर्थिक प्रणाली में न्याय को सत्यापित करने हेतु एक ठोस माध्यम स्वरूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसके द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि कार्यकर्ता को एक व्यक्ति के रूप में या उत्पादन में सिर्फ एक लागत स्वरूप देखना है। कार्य को एक समस्या स्वरूप ना देखा जाए जिसका निराकरण किया जाता हो, या लाभ उत्पादन के साधन स्वरूप ही, लेकिन यह व्यक्ति की एक मूलभूत भलाई, अर्थव्यवस्था का एक मुख्य क्रियाकलाप हो जिस पर पूरी सामाजिक व्यवस्था टिकी हो। कार्य के द्वारा मानव अपनी स्वतंत्रता, सृजनात्मकता और सहयोग करने की क्षमता को अभिव्यक्त करता, समाज की संस्कृति और नैतिकता के विकास में सहयोग देता है। इसके आलोक में विभिन्न तरह के कार्यों की असुरक्षा, अलग अलग कैरियर के मार्ग और प्रगति को सिर्फ कार्य क्षमता के हिसाब से नहीं बल्कि कार्यकर्ता के सम्मान के दृष्टिकोण से सही मेहनत आने के अधिकार और समाज में सहभागी होने की असल संभावना की तर्ज से देखा जाना चाहिए। अपने विश्व पत्र सोलिचितुदो रे सोचियालिस जो पोपुलरुम प्रोग्रेसियो की 20वीं सालगिरह को रेखांकित करता है, संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने विकास की कमी के अभिशाप की पुनः जांच की। उन्होंने गरीब देशों के आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में दुनिया के उत्तर और दक्षिण के बीच लगातार और वास्तव में बढ़ते अंतर को देखते हुए असंख्य प्रयासों की विफलता को स्वीकार किया। उन्होंने आर्थिक, वित्तीय और व्यापार व्यवस्था की भी आलोचना की, जिन्हें सबसे अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था संचालित करती है, जो संचार के हिसाब से अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि वे कमजोर अर्थव्यवस्था का दम घोट देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ तकनीकी ही नहीं बल्कि गंभीर नैतिक जांच भी होनी चाहिए। इस संदर्भ में व्यक्तियों, लोगों और देशों के बीच एकात्मकता और एक ठोस साझा उत्तरदायित्व के रूप में समझा गया एक सामाजिक मित्रता या राजनैतिक कार्य जो संत पापा पॉल छठवें के द्वारा प्रेम की सभ्यता स्वरूप निर्देशित किया गया। श्रोताओं, रेरुम नोवारुम के साल गिरह के अवसर पर विश्व प्रेरितिक पत्र चेंतिसिमुस आनुस ने सोवियत संघ के पतन और गणतंत्र तथा अर्थव्यवस्था बाजार विकास के संबंध में एक चिंतन प्रस्तुत किया। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने संत पापा पियूस 12वें के संदेश पर जोर दिया कि कलिसिया लोकतंत्र को इसलिए महत्व देती है क्योंकि यह नागरिकों की प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित करती है। यह उन्हें अपने नेताओं का चुनाव करने और शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें बदलने का अवसर देती है और सत्ता को कुछ खास कुलीन दलों के हाथों में जाने के एकाधिकार या आदर्शों से प्रेरित होने को रोकती है। उसी भांति कलिसिया बाजार के सकारात्मक गुण और व्यक्तिगत पहलुओं को पहचानने के योग्य होती है यदि वह नैतिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती और एकात्मकता से सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती, लाभ के तर्क से प्रभावित हुए बिना अति संवेदनशीलों का परित्याग नहीं करती है। यह मुख्य रूप से कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा में एक विशेष विरासत को जोड़ती है। कार्य का सम्मान, लोगों के मध्य एकता के भाव, गणतंत्र का एक तर्कपूर्ण मूल्यांकन और बाजार अर्थव्यवस्था के बीच संबंध की सुनिश्चितता नए रूप में शोषणों के स्वरूपों, बहिष्कार और राजनीति में प्रतिनिधित्व की जांच पड़ताल हेतु निरंतर मापदंडों को प्रदान करती है। श्रोताओं, अपने सामाजिक विश्वपत्र कारितास इन वेरितास में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने वैश्वीकरण के आलोक में पोपुलोरुम प्रोग्रेसियो की विषय वस्तु में हुए विकास का मूल्यांकन करते हुए उन्हें विस्तृत करने की चाह रखी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास का अभिप्राय सच्ची तरक्की, हर किसी को लाभ और वास्तविक टिकाऊपन से है। कहने का अर्थ, आर्थिक विकास सही अर्थ में सबों को सम्माहित करता हो और सृष्टि की सीमाओं का सम्मान करता हो। उन्होंने यद्यपि इस बात पर बल दिया कि समृद्ध देशों में नए प्रकार की दरिद्रता उत्पन्न हो रही है, इसके साथ ही हम बहिष्कार के विशेष रूपों को देखते हैं, जबकि अति निर्धन प्रांतें, छोटे अल्पसंख्यक जो समृद्ध उपभोक्ताओं के निकट रहते हुए अपने को अमानवीय परिस्थितियों के शिकार पाते हैं। इसके अलावे उन्होंने देखा कि नई वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली जो एक वृहद पूंजी और उत्पादन के साधनों से जुड़ी है, अपने में देशों की राजनीतिक शक्ति और उनके आर्थिक प्रक्रिया को प्रभावित करने से जुड़ी है। यही कारण है कि संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक क्रियाकलाप इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि वे महज व्यापारिक मनोभाव के विस्तार द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि उन्हें चाहिए कि वे अपने को जन सामान्य की भलाई हेतु स्थापित करें, जिसके लिए राजनीतिक समुदाय की अपनी पूर्ण जिम्मेदारी है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवे ने वैटिकन अभिलेखागार एवं पुस्तकालय के स्टाफ से बात करते हुए कलीसिया एवं दुनिया की सेवा में इन दोनों संस्थानों के मिशन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबों से भरी जगह नहीं है, बल्कि रिश्तों, आदान प्रदान एवं विचारों को साझा करने की जगह भी है। सोमवार को वैटिकन में ऐतिहासिक प्रेरितिक अभिलेखागार एवं प्रेरितिक पुस्तकालय का दौरा करते हुए पोप लियो चौदहवें ने आक्वा कैटास्ट्रोफी एंड वंडर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने दोनों संस्थानों के मिशन एवं काम के लिए अपना सामीप्य और सराहना व्यक्त की, जिससे उन्होंने कलीसिया और पूरी मानवता के हित के लिए संस्कृति के विकास एवं फैलाव की सेवा बताया। प्रेरितिक संविधान प्रेदिकाते एवेंजेलियम नंबर 242 के अनुसार वैटिकन अभिलेखागार एवं पुस्तकालय विश्वव्यापी कलीसिया के प्रशासन से जुड़े कार्यों और दस्तावेजों को बचाकर रखने और देखभाल करने का काम करते हैं। वे कला और सीखने की एक बड़ी विरासत को इकट्ठा करने और उसे विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध कराने का भी काम करते हैं। एक पुस्तकालय को एक आरामदायक शांत जगह के रूप में देखा जा सकता है, जबकि पोप लियो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक किताब एक बेचैनी को जागृत करती है, इच्छा को बढ़ावा देती और खोज करने का साहस करती है। संत अगस्तीन इसके उदाहरण है। संत पौलुस का पत्र पढ़ने से हिप्पो के धर्मदर्श का संदेह गायब हो गया था। संत पापा ने समझाया, लेकिन इच्छा नहीं जो अधिक मजबूत हुए, बल्कि बाइबल के ग्रंथों का अध्ययन करने से संत अगस्तीन की आत्मा खुले। उसी प्रकार पोप ने कहा, अध्ययन, संरक्षण एवं पेत्रुस के उत्तराधिकारी की किताबें उपलब्ध कराने के द्वारा आप कलीसिया एवं मानवता की इच्छा की गहराई तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसके बिना सब कुछ जीवित ईश्वर, सत्य और प्रेम के स्रोत से दूर हो जाता है। एक प्रतीक का उपयोग करते हुए पोप ने प्रेरितिक लाइब्रेरी को एक हृदय कहा। उन्होंने समझाया, धड़कता हुआ दिल जीवन का प्रतीक है और यह दो विपरीत गतिविधियों, सिस्टोल और डायस्टोल का परिणाम है, एक संकुचन और एक विश्राम, एक केंद्र की ओर गति और दूसरा परिधि की ओर। उन्होंने कहा कि पोप की लाइब्रेरी तब तक जीवित रहती है जब तक उसका सिस्टोल और डायस्टोल बना रहता है। प्रेरितिक लाइब्रेरी का सिस्टोल है कि यह शांति, समझदारी, सम्मान और देखभाल वाली जगह बनी रहे। पोप लियो ने अपनी इच्छा जाहिर की कि प्रेरितिक लाइब्रेरी का मठ जैसा माहौल संत लूका सचित सुसमाचार के उस अंश की याद दिलाती है। यदि तुम्हें पुनर्निर्माण करना है, यदि तुम्हें संघर्ष करना है, तो पहले बैठो और अध्ययन करो। उन्होंने कहा कि एक तरफ पढ़ाई के लिए इस खजाने तक पहुंच को आसान बनाना सही है, जिसमें डिजिटाइजेशन एवं ऑनलाइन पहुंच शामिल हैं। दूसरी तरफ लाइब्रेरी जाकर अध्ययन करना और पुरानी प्रथा को बचाकर रखना एवं उसे बढ़ावा देना भी जरूरी है। यह सिर्फ किताबों से भरी जगह नहीं है, बल्कि रिश्तों, आदान प्रदान एवं विचारों को साझा करने वाली जगह भी है। पोप लियो ने गौर किया कि पुस्तकालय का निर्माण उसी समय किया गया था जब यह दुनिया में आम बात नहीं थी। उन्होंने कहा, इस तरह लाइब्रेरी कलीसिया की पुरानी और हमेशा नई संस्कृति, खुलेपन की गवाही देती है। प्रदर्शनी का उद्घाटन इस परंपरा की पुष्टि है। पोप ने वैटिकन अभिलेखागार एवं लाइब्रेरी के स्टाफ से इसे जारी रखने का प्रोत्साहन दिया और उन्हें चुनौती दी कि वे अतीत एवं भविष्य के प्रति वफादार रहें, अपने काम के लिए आवश्यक भाषाओं एवं तरीकों का इस्तेमाल करें तथा मेल मिलाप के नए तरीके खोजें। वैटिकन के संत पियूस 10वें सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलानोवा विश्वविद्यालय ने कार्डिनल माइकल चर्नी को पोप लियो चौदहवें स्थिरता पदक के प्रथम विजेता घोषित किया। पोप लियो चौदहवें स्थिरता मेडल के पहले विजेता येसु संघी कार्डिनल माइकल चर्नी परमधम पीठ समग्र मानव विकास विभाग के सासम्मान सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। यह पदक उनकी दशकों की उल्लेखनीय सेवा एवं एक ऐसे नेता के रूप में दिया गया है जिनका जीवन इस मेडल की सबसे अच्छी झलक दिखाती है। उक्त बात विलानोवा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष फादर पीटर डोन्यू पीएचडी ने सोमवार को यूनिवर्सिटी द्वारा 14 सितंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण से थोड़ी दूर वैटिकन के साला संत पियो 10वें में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, जिसमें पदक के पहले विजेता की घोषणा की गई।
सम्मेलन में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के साथ कार्डिनल चर्नी और विलानोवा स्कूल ऑफ बिजनेस में नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व संकाय निदेशक डॉक्टर मानवेला प्रिसेमोत्पायन PhD और संचार विभाग के संपादक के उपनिदेशक अलेसांद्रो जिसोती थे, जिन्होंने प्रेस सम्मेलन का संचालन किया। विलानोवा विश्वविद्यालय अमेरिका में फिलाडेल्फिया के पास स्थित एक अगुस्टीनी कार्तिक संस्थान है, जहां पोप लियो चौदहवें ने 1977 में गणित में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। विश्वविद्यालय ने बाद में उन्हें 2014 में मानविकी में डॉक्टर की मानद डिग्री प्रदान की। कार्यक्रम में अगुस्टीनी ऑर्डर के प्रायर जनरल फादर जोसेफ फरेल OSE की उपस्थिति पर जिसोती ने कहा कि फादर की उपस्थिति आज जिन घटनाओं पर बात हो रही है उसके पीछे की महान अगुस्टीनी प्रेरणा को दिखाती है। पदक पर बात करते हुए पहले फादर पीटर ने पोप लियो को उनके नेतृत्व, साक्ष्य और हमारे आम घर की रक्षा करने और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के काम करने में उनकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बतलाया कि पोप लियो चौदह में स्थित पदक का मकसद किसी भी क्षेत्र के उन लोगों को पहचान देना है जिनका नेतृत्व सतत्ता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण दिखाती है। पुरस्कार विजेताओं को ऐसे काम के लिए चुना जाता है जिनमें पर्यावरण की देखभाल, सामाजिक न्याय, कमजोर समुदायों की सुरक्षा और जिम्मेदार आर्थिक प्रबंधन शामिल हो। विलानोवा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्थित कांग्रेस के दौरान हर दो साल में दिए जाने वाले इस अवार्ड के बारे में उन्होंने कहा कि इसका मकसद नेतृत्व को प्रेरित करना है, नए शोध को बढ़ावा देना और एक अधिक न्यायपूर्ण एवं सतत दुनिया बनाने में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। भारतीय कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन ने अपनी कार्यकारी समिति की 1वीं सभा के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मनाया। CCBI के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने इस मौके को बीते कल के लिए शुक्रिया अदा करने और भविष्य के लिए नई उम्मीद एवं दर्शन का पल बताया। वियना में चल रही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 70वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड कलागर ने परमाणु तकनीकी का इस्तेमाल सोच समझ कर करने की अपील की। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो 14वें का यह पहला विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। ओत्तो जेसिमा अद्वेनियंस जोरेरुम नोवारुम की 80वीं वर्षगांठ में लिखी गई संत पापा पॉल 6वें इस दृष्टिकोण को औद्योगिकीकरण के उपरांत समाज में लागू किया, जो शहरीकरण, गरीबी के नए रूपों और तेजी से हो रहे सांस्कृतिक बदलावों द्वारा पहचाना जाता था, जहां लोगों और समुदायों के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। संत पापा पॉल 6वें ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि यद्यपि सुसमाचार की घोषणा, जो हमारे समय की संस्कृति और ऐतिहासिक संदर्भ की विभिन्नता में लिखी और जी गई थी, उसका संदेश पुराना अप्रचलित नहीं हुआ था। इसके बदले यह मानव के दृष्टिकोण, उसके संबंधों, अधिकार और जन सामान्य के हित के बारे में कहता है, जो अब भी अर्थव्यवस्था, राजनीति और सांस्कृतिक चुनावों को दिशा देने के योग्य है। दूसरे शब्दों में सुसमाचार की महत्वपूर्णता हमारे लिए बनी रहती है, क्योंकि यह मानवीय या अमानवीय, हमारे परिवर्तन होने वाली परिस्थितियों में स्वतंत्र या प्रताड़ना करने वाली बातों को देखने और पहचानने में मदद करती है। कलिसे की सामाजिक धर्म शिक्षा के संबंध में संत पापा पॉल 6वें की अति विशिष्ट विरासत यह रही, जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें मानवीय सम्मान विकास से बाहर रखा जाता है, तब तक ख्रिस्तीय समुदाय शांति की शाब्दिक घोषणा मात्र से संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसके विपरीत लोग जहां हाशिए पर हैं, सुसमाचार को उन आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं पर निर्णय लेने की अनुमति देनी चाहिए, जो जैसा कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमें बाद में याद दिलाते हैं, वास्तविक पाप की संरचनाएं बन सकती हैं। परिणाम स्वरूप विकास की प्रक्रियाओं में किसी भी व्यक्ति या लोगों को उपभोग की वस्तु स्वरूप नहीं देखा जाए। श्रोताओं, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की समृद्ध सामाजिक धर्म शिक्षा 20वीं सदी की महान वैचारिक प्रणाली के संकट और आर्थिक वैश्वीकरण के शुरुआत के चौराहे पर है। उनका विश्व पत्र लबेरुम एक्स रेचेंस, कड़ी मेहनत करना, जो रेरुम नोवारुम के 90 सालों के प्रकाशन उपरांत लिखा गया, जिसके द्वारा कार्य पर चिंतन हेतु एक नया मार्ग खुला। यह उचित मेहनतानाओं को पूरे सामाजिक आर्थिक प्रणाली में न्याय को सत्यापित करने हेतु एक ठोस माध्यम स्वरूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसके द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि कार्यकर्ता को एक व्यक्ति के रूप में या उत्पादन में सिर्फ एक लागत स्वरूप देखना है, कार्य को एक समस्या स्वरूप ना देखा जाए जिसका निराकरण किया जाता हो, या लाभ उत्पादन के साधन स्वरूप ही, लेकिन यह व्यक्ति की एक मूलभूत भलाई, अर्थव्यवस्था का एक मुख्य क्रियाकलाप हो जिस पर पूरी सामाजिक व्यवस्था टिकी हो। कार्य के द्वारा मानव अपनी स्वतंत्रता, सृजनात्मकता और सहयोग करने की क्षमता को अभिव्यक्त करता, समाज की संस्कृति और नैतिकता के विकास में सहयोग देता है। इसके आलोक में विभिन्न तरह के कार्यों की असुरक्षा, अलग अलग कैरियर के मार्ग और प्रगति को सिर्फ कार्य क्षमता के हिसाब से नहीं बल्कि कार्यकर्ता के सम्मान के दृष्टिकोण से सही मेहनताने के अधिकार और समाज में सहभागी होने की असल संभावना की तर्ज से देखा जाना चाहिए। अपने विश्वपत्र सोलिचितुदो रे 46 जो पोपुलरुम प्रोग्रेसियो की 20वीं सालगिरह को रेखांकित करता है, संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने विकास की कमी के अभिशाप की पुनः जांच की। उन्होंने गरीब देशों के आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में दुनिया के उत्तर और दक्षिण के बीच लगातार और वास्तव में बढ़ते अंतर को देखते हुए असंख्य प्रयासों की विफलता को स्वीकार किया। उन्होंने आर्थिक, वित्तीय और व्यापार व्यवस्था की भी आलोचना की, जिन्हें सबसे अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था संचालित करती है, जो संचार के हिसाब से अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि वे कमजोर अर्थव्यवस्था का दम घोट देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ तकनीकी ही नहीं बल्कि गंभीर नैतिक जांच भी होनी चाहिए। इस संदर्भ में व्यक्तियों, लोगों और देशों के बीच एकात्मकता और एक ठोस साझा उत्तरदायित्व के रूप में समझा गया एक सामाजिक मित्रता या राजनैतिक कार्य जो संत पापा पॉल छठवें के द्वारा प्रेम की सभ्यता स्वरूप निर्देशित किया गया। श्रोताओं, रेरुम नोवारुम के सालगिरह के अवसर पर विश्व प्रेरितिक पत्र चेंतिसिमुस आनुस ने सोवियत संघ के पतन और गणतंत्र तथा अर्थव्यवस्था बाजार विकास के संबंध में एक चिंतन प्रस्तुत किया। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने संत पापा पियूस 12वें के संदेश पर जोर दिया कि कलीसिया लोकतंत्र को इसलिए महत्व देती है क्योंकि यह नागरिकों की प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित करती है। यह उन्हें अपने नेताओं का चुनाव करने और शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें बदलने का अवसर देती है और सत्ता को कुछ खास कुलीन दलों के हाथों में जाने के एकाधिकार या आदर्शों से प्रेरित होने को रोकती है। उसी भांति कलीसिया बाजार के सकारात्मक गुण और व्यक्तिगत पहलुओं को पहचानने के योग्य होती है यदि वह नैतिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती और एकात्मकता से सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती, लाभ के तर्क से प्रभावित हुए बिना अति संवेदनशीलों का परित्याग नहीं करती है। यह मुख्य रूप से कलीसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा में एक विशेष विरासत को जोड़ती है। कार्य का सम्मान, लोगों के मध्य एकता के भाव, गणतंत्र का एक तर्कपूर्ण मूल्यांकन और बाजार अर्थव्यवस्था के बीच संबंध की सुनिश्चितता नए रूप में शोषणों के स्वरूपों, बहिष्कार और राजनीति में प्रतिनिधित्व की जांच पड़ताल हेतु निरंतर मापदंडों को प्रदान करती है। श्रोताओं, अपने सामाजिक विश्वपत्र कारितास इन वेरितास में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने वैश्वीकरण के आलोक में पोपुलोरुम प्रोग्रेसियो की विषय वस्तु में हुए विकास का मूल्यांकन करते हुए उन्हें विस्तृत करने की चाह रखी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास का अभिप्राय सच्ची तरक्की, हर किसी को लाभ और वास्तविक टिकाऊपन से है। कहने का अर्थ, आर्थिक विकास सही अर्थ में सबों को सम्माहित करता हो और सृष्टि की सीमाओं का सम्मान करता हो। उन्होंने यद्यपि इस बात पर बल दिया कि समृद्ध देशों में नए प्रकार की दरिद्रता उत्पन्न हो रही है, इसके साथ ही हम बहिष्कार के विशेष रूपों को देखते हैं, जबकि अति निर्धन प्रांतें, छोटे अल्पसंख्यक जो समृद्ध उपभोक्ताओं के निकट रहते हुए अपने को अमानवीय परिस्थितियों के शिकार पाते हैं। इसके अलावा उन्होंने देखा कि नई वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली जो एक वृहद पूंजी और उत्पादन के साधनों से जुड़ी है, अपने में देशों की राजनीति शक्ति और उनके आर्थिक प्रक्रिया को प्रभावित करने से जुड़ी है। यही कारण है कि संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक क्रियाकलाप इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि वे महज व्यापारिक मनोभाव के विस्तार द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि उन्हें चाहिए कि वे अपने को जन सामान्य की भलाई हेतु स्थापित करें, जिसके लिए राजनीतिक समुदाय की अपनी पूर्ण जिम्मेदारी है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने वैटिकन अभिलेखागार एवं पुस्तकालय के स्टाफ से बात करते हुए कलीसिया एवं दुनिया की सेवा में इन दोनों संस्थानों के मिशन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबों से भरी जगह नहीं है, बल्कि रिश्तों, आदान प्रदान एवं विचारों को साझा करने की जगह भी है। सोमवार को वैटिकन में ऐतिहासिक प्रेरितिक अभिलेखागार एवं प्रेरितिक पुस्तकालय का दौरा करते हुए पोप लियो 14वें ने आक्वा कैटास्ट्रोफी एंड वंडर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने दोनों संस्थानों के मिशन एवं काम के लिए अपना सामीप्य और सराहना व्यक्त की, जिससे उन्होंने कलीसिया और पूरी मानवता के हित के लिए संस्कृति के विकास एवं फैलाव की सेवा बताया। प्रेरितिक संविधान प्रेदिकाते एवेंजेलियम नंबर 242 के अनुसार वैटिकन अभिलेखागार एवं पुस्तकालय विश्वव्यापी कलीसिया के प्रशासन से जुड़े कार्यों और दस्तावेजों को बचाकर रखने और देखभाल करने का काम करते हैं। वे कला और सीखने की एक बड़ी विरासत को इकट्ठा करने और उसे विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध कराने का भी काम करते हैं। एक पुस्तकालय को एक आरामदायक शांत जगह के रूप में देखा जा सकता है, जबकि पोप लियो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक किताब एक बेचैनी को जागृत करती है, इच्छा को बढ़ावा देती और खोज करने का साहस करती है। संत अगस्तीन इसके उदाहरण है। संत पौलुस का पत्र पढ़ने से हिप्पो के धर्मदोष का संदेह गायब हो गया था। संत पापा ने समझाया, लेकिन इच्छा नहीं जो अधिक मजबूत हुए, बल्कि बाइबल के ग्रंथों का अध्ययन करने से संत अगस्तीन की आत्मा खुले। उसी प्रकार पोप ने कहा, अध्ययन, संरक्षण एवं पेत्रुस के उत्तराधिकारी की किताबें उपलब्ध कराने के द्वारा आप कलीसिया एवं मानवता की इच्छा की गहराई तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसके बिना सब कुछ जीवित ईश्वर, सत्य और प्रेम के स्रोत से दूर हो जाता है। एक प्रतीक का उपयोग करते हुए पोप ने प्रेरितिक लाइब्रेरी को एक हृदय कहा। उन्होंने समझाया, धड़कता हुआ दिल जीवन का प्रतीक है और यह दो विपरीत गतिविधियों, सिस्टोल और डायस्टोल का परिणाम है, एक संकोचन और एक विश्राम, एक केंद्र की ओर गति और दूसरा परिधि की ओर। उन्होंने कहा कि पोप की लाइब्रेरी तब तक जीवित रहती है जब तक उसका सिस्टोल और डायस्टोल बना रहता है। प्रेरितिक लाइब्रेरी का सिस्टोल है कि यह शांति, समझदारी, सम्मान और देखभाल वाली जगह बनी रहे। पोप लियो ने अपनी इच्छा जाहिर की कि प्रेरितिक लाइब्रेरी का मठ जैसा माहौल संत लूका सचित सुसमाचार के उस अंश की याद दिलाती है। यदि तुम्हें पुनर्निर्माण करना है, यदि तुम्हें संघर्ष करना है, तो पहले बैठो और अध्ययन करो। उन्होंने कहा कि एक तरफ पढ़ाई के लिए इस खजाने तक पहुंच को आसान बनाना सही है, जिसमें डिजिटाइजेशन एवं ऑनलाइन पहुंच शामिल है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी जाकर अध्ययन करना और पुरानी प्रथा को बचा कर रखना एवं उसे बढ़ावा देना भी जरूरी है। यह सिर्फ किताबों से भरी जगह नहीं है, बल्कि रिश्तों, आदान प्रदान एवं विचारों को साझा करने वाली जगह भी है। पोप लियो ने गौर किया कि पुस्तकालय का निर्माण उसी समय किया गया था जब यह दुनिया में आम बात नहीं थी। उन्होंने कहा, इस तरह लाइब्रेरी कलीसिया की पुरानी और हमेशा नई संस्कृति, खुलेपन की गवाही देती है। प्रदर्शनी का उद्घाटन इस परंपरा की पुष्टि है। पोप ने वैटिकन अभिलेखागार एवं लाइब्रेरी के स्टाफ से इसे जारी रखने का प्रोत्साहन दिया और उन्हें चुनौती दी कि वे अतीत एवं भविष्य के प्रति वफादार रहें, अपने काम के लिए आवश्यक भाषाओं एवं तरीकों का इस्तेमाल करें तथा मेल मिलाप के नए तरीके खोजें। वैटिकन के संत पियूस 10वें सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलानोवा विश्वविद्यालय ने कार्डिनल माइकल चर्नी को पोप लियो 14वें स्थिरता पदक के प्रथम विजेता घोषित किया। पोप लियो 14वें स्थिरता मेडल के पहले विजेता येसु संघी कार्डिनल माइकल चर्नी परमधम पीठ समग्र मानव विकास विभाग के सात सम्मान सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। यह पदक उनकी दशकों की उल्लेखनीय सेवा एवं एक ऐसे नेता के रूप में दिया गया है जिनका जीवन इस मेडल की सबसे अच्छी झलक दिखाती है। उक्त बात विलानोवा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष फादर पीटर डोन्यू पीएचडी ने सोमवार को यूनिवर्सिटी द्वारा 14 सितंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण से थोड़ी दूर वैटिकन के साला संत पियो 10वें में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, जिसमें पदक के पहले विजेता की घोषणा की गई।
सम्मेलन में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के साथ कार्डिनल चर्नी और विलानोवा स्कूल ऑफ बिजनेस में नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व संकाय निदेशक डॉक्टर मानवेला प्रिसेमोत्पायन PhD और संचार विभाग के संपादक के उपनिदेशक अलेसांद्रो जिसोती थे, जिन्होंने प्रेस सम्मेलन का संचालन किया। विलानोवा विश्वविद्यालय अमेरिका में फिलाडेल्फिया के पास स्थित एक अगुस्टीनी कैथोलिक संस्थान है, जहां पोप लियो XIV ने 1977 में गणित में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। विश्वविद्यालय ने बाद में उन्हें 2014 में मानविकी में डॉक्टर की मानद डिग्री प्रदान की। कार्यक्रम में अगुस्टीनी ऑर्डर के प्रायर जनरल फादर जोसेफ फरेल OSE की उपस्थिति पर जिसोती ने कहा कि फादर की उपस्थिति आज जिन घटनाओं पर बात हो रही है उसके पीछे की महान अगुस्टीनी प्रेरणा को दिखाती है। पदक पर बात करते हुए पहले फादर पीटर ने पोप लियो को उनके नेतृत्व, साक्ष्य और हमारे आम घर की रक्षा करने और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के काम करने में उनकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बतलाया कि पोप लियो XIV स्थित पदक का मकसद किसी भी क्षेत्र के उन लोगों को पहचान देना है जिनका नेतृत्व सतत्ता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण दिखाती है। पुरस्कार विजेताओं को ऐसे काम के लिए चुना जाता है जिनमें पर्यावरण की देखभाल, सामाजिक न्याय, कमजोर समुदायों की सुरक्षा और जिम्मेदार आर्थिक प्रबंधन शामिल हो। विलानोवा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्थित कांग्रेस के दौरान हर 2 साल में दिए जाने वाले इस अवार्ड के बारे में उन्होंने कहा कि इसका मकसद नेतृत्व को प्रेरित करना है, नए शोध को बढ़ावा देना और एक अधिक न्यायपूर्ण एवं सतत दुनिया बनाने में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। भारतीय कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन ने अपनी कार्यकारी समिति की 1वीं सभा के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मनाया। CCBI के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने इस मौके को बीते कल के लिए शुक्रिया अदा करने और भविष्य के लिए नई उम्मीद एवं दर्शन का पल बताया। वियना में चल रही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 70वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड गलागर ने परमाणु तकनीकी का इस्तेमाल सोच समझ कर करने की अपील की। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा,

0: क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य

0: तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

जानकर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारी आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini.
1: भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। मानव समुदाय पर समर्पित धर्म सिद्धांत गाउडियम एट स्पेस का दूसरा अध्याय हमें मानव का एक दूसरे के संग बढ़ती निर्भरता पर चिंतन करने का आह्वान करता है। यह वर्तमान दुनिया की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इस सच्चाई को यद्यपि चाहिए कि वह अपनी गहराई में लोगों के बीच एकता में पूर्णता को प्राप्त करे, जिसके लिए व्यक्ति की पूर्ण आध्यात्मिक गरिमा के प्रति आपसी सम्मान जरूरी है। ये वे बातें हैं जो हमारे समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक ओर तकनीकी विकास, संचार और सोशल मीडिया तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में निरंतर वृद्धि नई संभावनाओं को खोल रही है। जहां हम दीवारों को टूटता और दूरियों को कम होता पाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम संबंधों को व्यक्तिगत तौर में कम और आभासी रूप में अधिक होता पाते हैं। यहाँ हम अपने लिए एक जोखिम को पाते हैं जो हमारे निर्णयों को अल्गोरिदम के हवाले कर देता है, जो कि सिर्फ मानवीय चेतना का भाग है। इस संदर्भ में ख्रिस्तीय समुदाय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सामाजिक रिश्तों में वास्तविक सार और व्यक्तिगत गहराई हासिल हो। धर्म सभा हमें ईश्वर की सृजनात्मक योजना से शक्ति और जीवन जीने के तरीकों को अपनाने हेतु आह्वान करता है, जहां सभी मानव एक परिवार का निर्माण करने और एक दूसरे के संग भ्रातृत्व के भाव में व्यवहार करने को बुलाए जाते हैं। यही कारण है कि हम ईश्वर और पड़ोसी के प्रेम को पहली और सबसे बड़ी आज्ञा स्वरूप पाते हैं, जो कि यीशु ख्रिस्त में पूर्ण रूपेण प्रकट होती और अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। संत पापा लियो ने कहा कि मानव की परिपूर्णता और समाज का विकास अपने में एक दूसरे के संग पारस्परिक निर्भरता से संलग्न हो। उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध रखना या उन्हें अलग करना अपने में अर्थहीन होगा। इतिहास, यहाँ तक कि वर्तमान इतिहास भी इस सत्य की पुष्टि स्पष्ट रूप में करता है। इसलिए हमें बार बार यह दोहराने से कभी नहीं थकना चाहिए, जैसे कि द्वितीय वैटिकन महासभा के आचार्यों ने अपने शब्दों में किया, कि सभी सामाजिक संस्थाओं की विषय वस्तु और लक्ष्य मनुष्य ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपनी प्रकृति के कारण पूरी तरह से सामाजिक जीवन पर निर्भर है। इस दृष्टिकोण से गाउडियम एट स्पेस इस बात पर जोर देता है कि दुनिया के लोगों और देशों की विविधता अपने में एक खतरा या एक जोखिम स्वरूप ना समझा जाए, बल्कि यह एक समृद्धि और विकास का एक साधन हो। युद्ध, जो कभी कभी हिंसा में परिणत होता है, पाप की शक्ति का परिणाम है और जिस भांति यह मन स्थितियों और कार्यों को विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न करता है, हमारे लिए विनाश और मृत्यु का कारण बनता है। हमें सदैव आदान प्रदान, साझा करने और सेवा करने के तर्क हेतु खुला रहना चाहिए, जैसे कि हम मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में पाते हैं। इस आधार पर प्रेरितिक धर्म सिद्धांत जन सामान्य की भलाई के बारे में एक ठोस परिभाषा प्रस्तुत करता है कि यह सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों का योग है जो सामाजिक समूहों और उनके व्यक्तिगत सदस्यों को संतुष्टि या विकास के लिए अपेक्षाकृत संपूर्ण और आसान मदद प्रदान करती है। इसके साथ ही लोगों के बीच परस्पर आत्मनिर्भरता को स्वीकारना, हर सामाजिक समूह को चाहिए कि वह दूसरे समूहों की जरूरतों और नैतिक उम्मीदों और यहाँ तक कि पूरे मानव परिवार की भलाई का ध्यान रखे। संत पापा लियो ने कहा,
2: I padri conciliari indicano poi alcune conseguenze pratiche di maggiore urgenza.
1: इस आधार से शुरू करते हुए धर्म सभा के आचार्यों ने इस भांति कुछ व्यवहारिक और विशेष परिस्थितियों को सुझाया। सर्वप्रथम व्यक्ति का मानवीय सम्मान, गौडियम एट स्पेस इसके संबंध में कहता है, जो कोई जीवन के विरुद्ध है, जैसे कि किसी तरह की हत्या, नरसंहार, गर्भपात, इच्छा मृत्यु या स्वयं के विनाश की चाह, जो कुछ भी मानवीय सम्मान की समग्रता का हनन करता है, जैसे कि अंग भंग करना, शरीर या मन को यातना देना या इच्छा शक्ति को ही जबरदस्ती दबाने की कोशिश करना, जो कुछ भी मानवीय सम्मान का अपमान करता है, जैसे कि अमानवीय स्थिति में जीवन यापन करना, मनमाना कारावास, देश निष्कासन, गुलामी, वेश्यावृत्ति, महिलाओं और बच्चों की बिक्री, इसके साथ ही घृणित कार्य के स्थल जहां व्यक्तियों को लाभ हेतु चीजों वस्तुओं की भांति उपयोग किया जाता है, न कि स्वतंत्र और उत्तरदायी जनों के रूप में। ये सभी बातें और इनके जैसी अन्य बातें वास्तव में घोर निंदनीय हैं। दूसरी परिस्थिति सभी मनुष्यों की मूलभूत समानता, सामाजिक न्याय की मांग करती है। इसके संदर्भ में दस्तावेज कहता है, हर प्रकार का भेदभाव, चाहे वह सामाजिक या सांस्कृतिक, लिंग, जाति, रंग, सामाजिक परिस्थिति, भाषा या धर्म के आधार पर हो, हमें उन्हें दूर और उखाड़ फेंकने की जरूरत है, क्योंकि वे ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध हैं। अंततः धर्म सभा के आचार्य हमें यह कहते हैं कि हम व्यक्तिवाद की मानसिकता से परे जाएं और उत्तरदायित्व और सहभागिता के मनोभावों को अपने में वहन करें।
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि मानवता का यह दृष्टिकोण जो लोगों का समुदाय है, हमारे लिए द्वितीय वैटिकन सभा की ओर से एक मूल्यवान निधि स्वरूप दी गई है। यह हम सबों को व्यक्तिगत और सामुदायिक आत्म परीक्षण करने में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप हम वर्तमान समय के सामाजिक और राजनैतिक परियोजनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो व्यक्ति के मानवीय सम्मान, सामाजिक न्याय और जन सामान्य के हित में स्वतंत्र सहभागिता पर आधारित है, क्योंकि मानवता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हर व्यक्ति एक अधिक मानवीय विश्व का निर्माण करने हेतु ईश्वर और अपने भाई बहनों के संग मिलकर काम करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में लगभग 300 लोगों से मुलाकात की, जो कल रोम के अगुस्टिनियानुम पैट्रिस्टिक इंस्टीट्यूट में हुई 21वीं सदी शहीदों का नया दौर नामक सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में अलग अलग भौगोलिक इलाकों और आज के समय में क्रिस्तीय गवाही के कई रूपों पर आधारित अनुभवों और योगदानों के जरिए मौजूदा दौर पर शहादत की घटना पर सोचने और अध्ययन करने का मौका मिला। इसे संत प्रकरण के लिए बने विभाग और नए शहीदों आस्था के गवाहों के लिए बने विभाग के आयोग ने आयोजित किया था। संत पापा ने एकत्रित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि संत पापा फ्रांसिस द्वारा 2023 में बनाए गए इस आयोग का काम उन लोगों के बारे में गवाहियां इकट्ठा करना है जिन्होंने मसीह के लिए अपनी जान दी है। संत पापा ने कहा कि उनकी गवाही हमें बताती है कि हमारा समय, जो ताकत की संस्कृति, बेहिसाब जोर जबरदस्ती और हथियारों के सिस्टम के लगातार विकास से हावी है, ऐसे लोगों की बहादुरी का भी गवाह है जिन्हें हम खुशी खुशी आस्था के नए गवाह कहते हैं। संत पापा ने याद दिलाया कि उनमें से कई लोग ताकत के गलत इस्तेमाल या आपराधिक संगठनों के हाथों मारे जाते हैं, क्योंकि ख्रिस्तीय होने के नाते वे सुसमाचार के नाम पर उनके अन्याय का विरोध करते हैं। संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि आस्था के इन गवाहों में यह साफ दिखता है कि अच्छाई करते रहने और प्यार में खुद को पूरी तरह समर्पित करने की उनकी हिम्मत बुराई पर यीशु की जीत से मिली है। यही वह एकमात्र निश्चित बात है जो उन लोगों को गहरा सुकून दे सकती है जो उनमें विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, उनमें ख्रिस्तीय जीवन शैली वीरतापूर्वक दिखाई देती है। यह कभी टकराव नहीं चाहती, बल्कि विनम्रता की शक्ति से टकराव को खत्म कर देती है। संत पापा ने कहा कि हम सभी प्रतिबद्धता के इस क्षितिज और उम्मीद की इस कार्यशाला में अपना योगदान देने के लिए बुलाए गए हैं। अंत में संत पापा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को उनकी बहुमूल्य सेवा के लिए धन्यवाद दिया और अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया। उधर द्वितीय महासभा घोषणा नोस्ट्रा एताते की 60वीं सालगिरह पर विश्वास के सिद्धांत, क्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने और अंतरधार्मिक वार्ता के लिए बने तीन विभागों ने कट्टरपंथ और अतिवाद का मुकाबला करने, बचाव दुश्मनी या तर्क के जीत को छोड़ने और धार्मिक आजादी की रक्षा करने की अपील को दोहराते हुए आशा की यात्रा लेख प्रकाशित किया। उस समय इसने कैथोलिक और यहूदियों, साथ ही दूसरे धर्मों के मानने वालों के बीच रिश्तों में एक अहम बदलाव की शुरुआत की और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में आशा की एक किरण का काम किया। आज 60 साल बाद भी महासभा का घोषणा पत्र युद्ध से बर्बाद हुई हमारी दुनिया और खराब होते प्राकृतिक पर्यावरण में उस आशा को फिर से जगाने के लिए एक अहम पैमाना बना हुआ है। इसी कारण महासभा की घोषणा की 60वीं वर्षगांठ पर विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग, ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग और अंतरधार्मिक संवाद के लिए गठित विभाग आशा की यात्रा नामक दस्तावेज प्रकाशित कर रहे हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो नोस्ट्रा एताते के बाद से संवाद के प्रमुख चरणों को पुनः रेखांकित करता है और एक शाश्वत संदेश की पुष्टि करता है। आशा की यात्रा लेख इस बात को फिर से दोहराती है कि यहूदी लोगों के साथ ईश्वर का समझौता कभी नहीं बदला जा सकता और यह बात कलीसिया के लिए लगातार एक चुनौती बनी हुई है। यहूदी लोगों के साथ एकजुटता में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ साझा संघर्ष भी शामिल है। इस संदर्भ में यह देखा गया है कि मध्य पूर्व के संघर्षों ने यहूदी ख्रिस्तीय वार्ता पर भी अपना असर डाला है। संबंधित विभागों का कहना है कि बातचीत की कई पुल डगमगाए हैं और हुई घटनाओं की अलग अलग व्याख्याओं के कारण
उनकी लगातार परीक्षा हो रही है। साथ ही वे इस आपसी समझ और सम्मान को बनाए रखने और उसे और विकसित करने का आग्रह करते हैं, जो 60 वर्षों से संयुक्त प्रयासों के दौरान मजबूती से कायम रहा है। इस लेख में बताया गया है कि इस काम के ठोस नतीजे सामने आए हैं, जिनमें इस्लाम और दूसरे धर्मों के साथ हुई बातचीत भी शामिल है। उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 70वें आम सम्मेलन में अपनी टिप्पणी में राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर ने परमाणु प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग का आह्वान किया, जो इसके साथ जुड़ी प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों से अलग नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 70वां आम सम्मेलन ऑस्ट्रिया के वियना में 15 सितंबर को शुरू हुआ और शुक्रवार 18 सितंबर तक जारी रहेगा। सम्मेलन के लिए संत पापा लियो 14वें की शुभकामनाएं देते हुए महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने परम धर्म पीठ की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को याद दिलाया। 70 साल पहले इसकी शुरुआती हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक होने के नाते उनका यह मानना रहा है कि परमाणु ऊर्जा जैसी बड़ी क्षमता वाली तकनीक को सही नैतिक सिद्धांतों के आधार पर चलाया जाना चाहिए, शांति और इंसानों के सर्वांगीण विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किसी भी विनाशकारी इस्तेमाल से बचाया जाना चाहिए। उधर उत्तरी अरब के प्रेरितिक विकार धर्माध्यक्ष एल्डो बेर्राडी और कुवैत व बगदाद के ग्रीक कैथोलिक मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष घट्टाज हाजिम ने मिलकर एथोस पर्वत की तीर्थ यात्रा का नेतृत्व किया। यह यात्रा 6 से 9 सितंबर तक हुई। इसमें शामिल लोगों को प्राधिधर्माध्यक्ष बार्थोलोम का आशीर्वाद भी मिला और वे वहां मौजूद 20 मठों में से 12 मठों के दर्शन कर पाए। धर्माध्यक्ष बेर्राडी ने इसे एक ऐतिहासिक यात्रा बतलाया। इसे ऐतिहासिक इसलिए कहा गया क्योंकि यह कुवैत में कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के बीच अच्छे संबंधों को दर्शाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारी आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापालियो चौदवे ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: फ्रेटेले सोरेले, बोनजोर्नो ए बेनवेनुती। Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini.
1: भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। मानव समुदाय पर समर्पित धर्म सिद्धांत गाउडियम एट स्पेस का दूसरा अध्याय हमें मानव का एक दूसरे के संग बढ़ती निर्भरता पर चिंतन करने का आह्वान करता है। यह वर्तमान दुनिया की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इस सच्चाई को यद्यपि चाहिए कि वह अपनी गहराई में लोगों के बीच एकता में पूर्णता को प्राप्त करे, जिसके लिए व्यक्ति की पूर्ण आध्यात्मिक गरिमा के प्रति आपसी सम्मान जरूरी है। ये वे बातें हैं जो हमारे समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक ओर तकनीकी विकास, संचार और सोशल मीडिया तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में निरंतर वृद्धि नई संभावनाओं को खोल रही है। जहां हम दीवारों को टूटता और दूरियों को कम होता पाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम संबंधों को व्यक्तिगत तौर में कम और आभासी रूप में अधिक होता पाते हैं। यहां हम अपने लिए एक जोखिम को पाते हैं जो हमारे निर्णयों को अल्गोरिदम के हवाले कर देता है, जो कि सिर्फ मानवीय चेतना का भाग है। इस संदर्भ में ख्रिस्तीय समुदाय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सामाजिक रिश्तों में वास्तविक सार और व्यक्तिगत गहराई हासिल हो। धर्म सभा हमें ईश्वर की सृजनात्मक योजना से शक्ति और जीवन जीने के तरीकों को अपनाने हेतु आह्वान करता है, जहां सभी मानव एक परिवार का निर्माण करने और एक दूसरे के संग भ्रातृत्व के भाव में व्यवहार करने को बुलाए जाते हैं। यही कारण है कि हम ईश्वर और पड़ोसी के प्रेम को पहली और सबसे बड़ी आज्ञा स्वरूप पाते हैं, जो कि यीशु ख्रीस्त में पूर्ण रूपेण प्रकट होती और अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। संत पापा लियो ने कहा कि मानव की परिपूर्णता और समाज का विकास अपने में एक दूसरे के संग पारस्परिक निर्भरता से संलग्न हो। उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध रखना या उन्हें अलग करना अपने में अर्थहीन होगा। इतिहास, यहाँ तक कि वर्तमान इतिहास भी इस सत्य की पुष्टि स्पष्ट रूप में करता है। इसलिए हमें बार बार यह दोहराने से कभी नहीं थकना चाहिए, जैसे कि द्वितीय वैटिकन महासभा के आचार्यों ने अपने शब्दों में किया कि सभी सामाजिक संस्थाओं की विषय वस्तु और लक्ष्य मनुष्य ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपनी प्रकृति के कारण पूरी तरह से सामाजिक जीवन पर निर्भर है। इस दृष्टिकोण से गाउडियम एट स्पेस इस बात पर जोर देता है कि दुनिया के लोगों और देशों की विविधता अपने में एक खतरा या एक जोखिम स्वरूप ना समझा जाए, बल्कि यह एक समृद्धि और विकास का एक साधन हो। युद्ध, जो कभी कभी हिंसा में परिणत होता है, पाप की शक्ति का परिणाम है और जिस भांति यह मन स्थितियों और कार्यों को विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न करता है, हमारे लिए विनाश और मृत्यु का कारण बनता है। हमें सदैव आदान प्रदान, साझा करने और सेवा करने के तर्क हेतु खुला रहना चाहिए, जैसे कि हम मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में पाते हैं। इस आधार पर प्रेरितिक धर्म सिद्धांत जन सामान्य की भलाई के बारे में एक ठोस परिभाषा प्रस्तुत करता है कि यह सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों का योग है जो सामाजिक समूहों और उनके व्यक्तिगत सदस्यों को संतुष्टि या विकास के लिए अपेक्षाकृत संपूर्ण और आसान मदद प्रदान करती है। इसके साथ ही लोगों के बीच परस्पर आत्मनिर्भरता को स्वीकारना, हर सामाजिक समूह को चाहिए कि वह दूसरे समूहों की जरूरतों और नैतिक उम्मीदों और यहाँ तक कि पूरे मानव परिवार की भलाई का ध्यान रखे। संत पापा लियो ने कहा,
2: I padri conciliari indicano poi alcune conseguenze pratiche di maggiore urgenza.
1: इस आधार से शुरू करते हुए धर्म सभा के आचार्यों ने इस भांति कुछ व्यवहारिक और विशेष परिस्थितियों को सुझाया। सर्वप्रथम व्यक्ति का मानवीय सम्मान, गौडियम एट स्पेस इसके संबंध में कहता है, जो कोई जीवन के विरुद्ध है, जैसे कि किसी तरह की हत्या, नरसंहार, गर्भपात, इच्छा मृत्यु या स्वयं के विनाश की चाह, जो कुछ भी मानवीय सम्मान की समग्रता का हनन करता है, जैसे कि अंग भंग करना, शरीर या मन को यातना देना या इच्छा शक्ति को ही जबरदस्ती दबाने की कोशिश करना, जो कुछ भी मानवीय सम्मान का अपमान करता है, जैसे कि अमानवीय स्थिति में जीवन यापन करना, मनमाना कारावास, देश निष्कासन, गुलामी, वेश्यावृत्ति, महिलाओं और बच्चों की बिक्री, इसके साथ ही घृणित कार्य के स्थल जहां व्यक्तियों को लाभ हेतु चीजों वस्तुओं की भांति उपयोग किया जाता है, न कि स्वतंत्र और उत्तरदायी जनों के रूप में। ये सभी बातें और इनके जैसी अन्य बातें वास्तव में घोर निंदनीय हैं। दूसरी परिस्थिति सभी मनुष्यों की मूलभूत समानता, सामाजिक न्याय की मांग करती है। इसके संदर्भ में दस्तावेज कहता है, हर प्रकार का भेदभाव, चाहे वह सामाजिक या सांस्कृतिक, लिंग, जाति, रंग, सामाजिक परिस्थिति, भाषा या धर्म के आधार पर हो, हमें उन्हें दूर और उखाड़ फेंकने की जरूरत है, क्योंकि वे ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध हैं। अंततः धर्म सभा के आचार्य हमें यह कहते हैं कि हम व्यक्तिवाद की मानसिकता से परे जाएं और उत्तरदायित्व और सहभागिता के मनोभावों को अपने में वहन करें।
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि मानवता का यह दृष्टिकोण जो लोगों का समुदाय है, हमारे लिए द्वितीय वैटिकन सभा की ओर से एक मूल्यवान निधि स्वरूप दी गई है। यह हम सबों को व्यक्तिगत और सामुदायिक आत्म परीक्षण करने में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप हम वर्तमान समय के सामाजिक और राजनैतिक परियोजनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो व्यक्ति के मानवीय सम्मान, सामाजिक न्याय और जन सामान्य के हित में स्वतंत्र सहभागिता पर आधारित है, क्योंकि मानवता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हर व्यक्ति एक अधिक मानवीय विश्व का निर्माण करने हेतु ईश्वर और अपने भाई बहनों के संग मिलकर काम करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो चौदहवें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में अलग अलग भौगोलिक इलाकों और आज के समय में ख्रिस्तीय गवाही के कई रूपों पर आधारित अनुभवों और योगदानों के जरिए मौजूदा दौर पर शहादत की घटना पर सोचने और अध्ययन करने का मौका मिला। इसे संत प्रकरण के लिए बने विभाग और नए शहीदों आस्था के गवाहों के लिए बने विभाग के आयोग ने आयोजित किया था। संत पापा ने एकत्रित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि संत पापा फ्रांसिस द्वारा 2023 में बनाए गए इस आयोग का काम उन लोगों के बारे में गवाहियां इकट्ठा करना है जिन्होंने मसीह के लिए अपनी जान दी है। संत पापा ने कहा कि उनकी गवाही हमें बताती है कि हमारा समय जो ताकत की संस्कृति, बेहिसाब जोर जबरदस्ती और हथियारों के सिस्टम के लगातार विकास से हावी है, ऐसे लोगों की बहादुरी का भी गवाह है जिन्हें हम खुशी खुशी आस्था के नए गवाह कहते हैं। संत पापा ने याद दिलाया कि उनमें से कई लोग ताकत के गलत इस्तेमाल या आपराधिक संगठनों के हाथों मारे जाते हैं, क्योंकि ख्रिस्तीय होने के नाते वे सुसमाचार के नाम पर उनके अन्याय का विरोध करते हैं। संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि आस्था के इन गवाहों में यह साफ दिखता है कि अच्छाई करते रहने और प्यार में खुद को पूरी तरह समर्पित करने की उनकी हिम्मत बुराई पर यीशु की जीत से मिली है। यही वह एकमात्र निश्चित बात है जो उन लोगों को गहरा सुकून दे सकती है जो उनमें विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, उनमें ख्रिस्तीय जीवन शैली वीरतापूर्वक दिखाई देती है। यह कभी टकराव नहीं चाहती, बल्कि विनम्रता की शक्ति से टकराव को खत्म कर देती है। संत पापा ने कहा कि हम सभी प्रतिबद्धता के इस क्षितिज और उम्मीद की इस कार्यशाला में अपना योगदान देने के लिए बुलाए गए हैं। अंत में संत पापा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को उनकी बहुमूल्य सेवा के लिए धन्यवाद दिया और अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया। उधर द्वितीय महासभा घोषणा नोस्त्रा एताते की 60वीं सालगिरह पर विश्वास के सिद्धांत, ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने और अंतरधार्मिक वार्ता के लिए बने तीन विभागों ने कट्टरपंथ और अतिवाद का मुकाबला करने, बचाव दुश्मनी या तर्क के जीत को छोड़ने और धार्मिक आजादी की रक्षा करने की अपील को दोहराते हुए आशा की यात्रा लेख प्रकाशित किया। उस समय इसने कैथोलिक और यहूदियों साथ ही दूसरे धर्मों के मानने वालों के बीच रिश्तों में एक अहम बदलाव की शुरुआत की और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में आशा की एक किरण का काम किया। आज 60 साल बाद भी महासभा का घोषणा पत्र युद्ध से बर्बाद हुई हमारी दुनिया और खराब होते प्राकृतिक पर्यावरण में उस आशा को फिर से जगाने के लिए एक अहम पैमाना बना हुआ है। इसी कारण महासभा की घोषणा की 60वीं वर्षगांठ पर विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग, ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग और अंतरधार्मिक संवाद के लिए गठित विभाग आशा की यात्रा नामक दस्तावेज प्रकाशित कर रहे हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो नोस्त्रा एताते के बाद से संवाद के प्रमुख चरणों को पुनः रेखांकित करता है और एक शाश्वत संदेश की पुष्टि करता है। आशा की यात्रा लेख इस बात को फिर से दोहराती है कि यहूदी लोगों के साथ ईश्वर का समझौता कभी नहीं बदला जा सकता और यह बात कलीसिया के लिए लगातार एक चुनौती बनी हुई है। यहूदी लोगों के साथ एकजुटता में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ साझा संघर्ष भी शामिल है। इस संदर्भ में यह देखा गया है कि मध्य पूर्व के संघर्षों ने यहूदी ख्रिस्तीय वार्ता पर भी अपना असर डाला है। संबंधित विभागों का कहना है कि बातचीत की कई पुल डगमगाए हैं और हुई घटनाओं की अलग अलग व्याख्याओं के कारण उनकी लगातार परीक्षा हो रही है। साथ ही वे इस आपसी समझ और सम्मान को बनाए रखने और उसे और विकसित करने का आग्रह करते हैं जो 60 वर्षों से संयुक्त प्रयासों के दौरान मजबूती से कायम रहा है। इस लेख में बताया गया है कि इस काम के ठोस नतीजे सामने आए हैं जिनमें इस्लाम और दूसरे धर्मों के साथ हुई बातचीत भी शामिल है।
उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 70वें आम सम्मेलन में अपनी टिप्पणी में राज्यों और

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर ने परमाणु प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग का आह्वान किया, जो इसके साथ जुड़ी प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों से अलग नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 70वां आम सम्मेलन ऑस्ट्रिया के वियना में 15 सितंबर को शुरू हुआ और शुक्रवार 18 सितंबर तक जारी रहेगा। सम्मेलन के लिए संत पापा लियो 14वें की शुभकामनाएं देते हुए महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने परम धर्म पीठ की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को याद दिलाया। 70 साल पहले इसकी शुरुआती हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक होने के नाते उनका यह मानना रहा है कि परमाणु ऊर्जा जैसी बड़ी क्षमता वाली तकनीक को सही नैतिक सिद्धांतों के आधार पर चलाया जाना चाहिए, शांति और इंसानों के सर्वांगीण विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किसी भी विनाशकारी इस्तेमाल से बचाया जाना चाहिए। उधर उत्तरी अरब के प्रेरितिक विकार धर्माध्यक्ष एल्डो बेर्राडी और कुवैत व बगदाद के ग्रीक कैथोलिक मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष घट्टाज हाजिम ने मिलकर एथोस पर्वत की तीर्थ यात्रा का नेतृत्व किया। यह यात्रा 6 से 9 सितंबर तक हुई। इसमें शामिल लोगों को प्राधि धर्माध्यक्ष बार्थोलोम का आशीर्वाद भी मिला और वे वहां मौजूद 20 मठों में से 12 मठों के दर्शन कर पाए। धर्माध्यक्ष बेर्राडी ने इसे एक ऐतिहासिक यात्रा बतलाया। इसे ऐतिहासिक इसलिए कहा गया क्योंकि यह कुवैत में कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के बीच अच्छे संबंधों को दर्शाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।